0: त्रिपटक बैंक अफ द इयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटिजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटिजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री
1: डिपोर्डिंग हाई स्कूल को प्लस टू तर्फ कक्षा 11 में साइंस र मैनेजमेंट संकाय अंतर्गत कंप्यूटर साइंस होटल मैनेजमेंट र फाइनेंस विषय में भर्ना खुलियो। हमारा विशेषता सिकाई मैत्री साइंस लैब अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब एसीयुक्त कक्षा कोठा संस्कार र संस्कृति में जोड़ व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास फर्दर स्टडी का लागि काउंसिलिंग रेफरेंस बुक सहित को ई लाइब्रेरी खेलकूद र बौद्धिक अतिरिक्त क्रियाकलाप होटल विजिट शैक्षिक भ्रमण र मोटिवेशन प्रोग्राम 12 को बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट नतीजा आईओई र आईओएम में राम्रो सफलता। आज संपर्क गर्नुस् डिप बोर्डिंग हाई स्कूल बुटोला सुखानगर फोन 071-534-570 531-354 र 530-570 डिप भनेकै उज्यालोको प्रतीक।

0: नयाँ नेपाल निर्माणको आधार निरन्तर सुन्दै रहनुहोस् सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz।
1: यति बेला मध्याह्नको 12 बजे।

0: कल्याण नेपाल निर्माणको आधार निरन्तर सुन्दै रहनुहोस् सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz।
1: यति बेला मध्याह्नको 12 बजे।

0: ब्रो
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए
0: राम्रोसँग ल गाइदिए म चाहिँ

0: क्यान्सर को सम्पूर्ण उपचार विराटनगर में सबै प्रकारका क्यान्सरको उपचार शल्यक्रिया रेडिएशन सहित न्यूक्लियर मेडिसिन सेवाहरू उपलब्ध छन् नेपालको कुनै पनि ठाउँबाट क्यान्सरको उपचारका लागि यति एयरलाइन्स मार्फत दुईतर्फी निशुल्क टिकटको व्यवस्था गरिएको छ र उपचारका लागि पालो फुक्नु पर्दैन विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल अन्तर्गत नेपालको नम्बर वन क्यान्सर हस्पिटल विराट क्यान्सर इन्स्टिच्युट विराटनगर थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9761000253।
1: ए रुक रुक रुक
2: के भयो किन कराएको यस्तो
1: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
3: इन्स्टेन्टमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
1: हो र हो नि एन्सेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
4: अझै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एन्सेल एपमा गई लिनुहोस् एन्सेल नेपालकै लागि
5: सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल द्वारा गरिब विपन्न तथा न्यून आय भएका बिरामीहरूको लागि सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ सस्तो सुलभ कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध सेवाहरू सस्तो सुलभ ओपिडी सस्तो सुलभ वार्ड सस्तो सुलभ आइसियू तथा एनआइसियू सेवा सिटी स्क्यान ल्याब यूएससी एक्सरे इन्डोस्कोपी सेवा सस्तो अपरेशन प्याकेज सस्तो सुलभ कार्यक्रमका विशेषताहरू न्यून शुल्कमा उल्लेखित सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिने बिरामीको संख्या अनुसार नर्सिङ स्टाफको व्यवस्था आधुनिक प्रविधि सहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान अनुभवी डाक्टरद्वारा परामर्श स्वच्छ सफा परिवार मैत्री वातावरणमा छिटो छरितो सेवा सम्पर्क सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल मायादेवी 8 भैरहवा रूपन्देही मोबाइल 9764600490 पुनश्च सस्तो सुलभ स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि बिहान 7:30 देखि 9:30 सम्म टिकट लिइसक्नु
6: सुन्नु न
7: भन भन
6: चाडबाडहरू पनि नजिकै छ बिहा पार्टीमा जाँदा पनि राम्रा गरगना छैनन् बनाउन पर्ने
7: बनाउला नि त फेरि सुन चाँदी जस्ता कुरा विश्वासिलो पसल पनि हेर्नु पर्यो नि
6: त्यसको लागि हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन नि हजुर हाम्रै सुन्दर नगरी 4 नम्बरमा शिला शिल्प स्याङ्जा कारीकोटे सुन चाँदी पसल खुलेको छ नि
7: त्यसो भए त जाम न त हामीसँग भएको पुरानो सुन पनि छ त्यो सुन पनि लगेर जाउँ है त्यही सुनसँग केही थप थाप गरी नयाँ सुन चाँदीका गर गहनाहरू बनाएर ल्याउला बरु त्यो सुन चाँदी पसल कहाँनिर छ कुन्नी
6: तौलिहवा रोड पश्चिम पट्टी एन्सेल टावर भएको ठाउँमा
7: हजुर ग्राहकहरूको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै अर्डर अनुसार रेडिमेड गर गहनाहरू पनि तयार गरिनुको साथै पुराना गहनासँग नयाँ गहना पनि सट्टीपट्टी गरिन्छ दक्षिण कालीगढबाट तपाईँले खोज जस्ता आकर्षक डिजाइनका गर गहनाहरूको लागि एकपटक अवश्य हामीलाई सम्झिनुहोस् शिला शिल्प स्याङ्जा कारीकोटी सुनचाँदी पसल तौलिहवा रोड पश्चिमपट्टि एन्सेल टावर भएकै घरमा प्रोप्राइटर ओम गहतराज शुभचिन्तक लोक बहादुर बिक नायरी मोबाइल 9825090095 9875056095 र 9814523311
8: का हो गए सामान बिटिया के लेके आए हो
9: देखा जाए ना काका बिटिया फूल लोड़े फुलबारी गई रही सांप डस लीस बिक निकाल दिया जाए यहीं से लेके आए हन
8: साप डसी लिए बीक के उपचार करे के तो सर्पदंश उपचार केंद्र में ले जाए के परिकमल वहीं दक्ष और तालीम प्राप्त चिकित्सक लोग बिखालू सांप डसे है कि नहीं पता लगाई के सर्पदंश उपचार में प्रयोग होए वाला एंटी भेनम से उपचार करते हैं
9: सर्पदंश उपचार केंद्र के बारे में तो हम सुने हन लेकिन
8: नहीं बिटिया का तुरंत उपचार केंद्र में लेके चले जाओ नेपाल सरकार सर्पदंश के उपचार तथा एंटी भेनम समेत निशुल्क उपलब्ध करावत है खर्च के चिंता नहीं लेके पड़ी
9: बिटिया न घबराओ तू का कुछ नहीं हुई हम एम्बुलेंस का फोन करी थे
8: एम्बुलेंस आवे के समय लाग सकत है हमरे बेटवा संदेश मोटरसाइकिल पर तुमका उपचार केंद्र पहुँचाई थी बाबू संदेश तैयार होके जल्दी आओ तो
10: सर्पदंश प्रभावित जिला सब में बीमरिया लोग के समय पर उपचार के जान बचावे के उद्देश्य से सर्पदंश उपचार केंद्र संचालन में है ये उपचार केंद्र में सर्पदंश के उपचार मुफ्त में मिलत है। सांप की डसाई से आदमी के मौत न हुए के खातिर सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होने वाला एंटीवेनम निशुल्क उपलब्ध कराया है। अपने नजदीक रहा सर्पदंश उपचार केंद्र के संपर्क नंबर साथ में रखे के चाहिए।
11: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में देख सका जाता है।

0: वाह भाई जी वाह, माल में तो कोई कमी नहीं है। इनमें से एक को मेरे साथ भेज दोगे?
1: ऐ लड़की, तुम जरा इधर आओ।
2: हजू की बोल रहे,
1: समझा नहीं है? तिमी हो यो मान्छे सित जाने हो? हाँ,
2: वहाँ सँग जाने रे। किन, कहाँ जाने हो र?
1: अरे पगली, वहाँ सँग रात बिताउन जाने हो, किन जाने भनेछ?
2: हाँ, यो के भन्नुभएको तपाईँले? माइली खोइ।
1: अरे ज्यादा मत बोल्ना, हामीलाई ठिक भनेछु। तुम्हारा माइली नहीं है, ऊ त अब आउँदैन।
2: माइली आउँदिन रे? तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्छ दिदी? माइली कहाँ गई? अनि हामी?
1: तिम्रो माइली यहाँ से गयो, अब तुम लोग यही मेरो कोठामा बैठ के मेरो धन्दा चलाओगी? हाँ होइन होइन, यो हुन सक्दैन। माइली त जहाजको टिकट मिलाउन जान्छु भनेर गएकी हो, उसले हामीलाई छोडेर जान सक्दिन। बरु भन्नुहोस् न, माइली कतिखेर आउँछ?
3: मैले कहा ना, अब वो नहीं आएगी। हमने तुम लोगों को 1.5 लाख रुपए में खरीदे है। हाँ, तुम लोगों का विदेश भी यही है।
2: माइली ले हामीलाई बेचेकी?
4: हे भगवान, हामी माथि यत्रो विश्वास गर, यो के सुन्नु पर्यो आज त हामीले? आज
3: लड़की चिल्लाना बंद करो। हाँ, ये रोना धोना नहीं चलेगा यहाँ पे, चलो इनके साथ चलो।
4: नाई दीदी, बिंती छ इष्टता बनोस्, हामी माथि दया गर्नुस दिदी। हामीबाट यस्तो काम हुन सक्दैन दिदी। हामीलाई त माइलीले विदेशमा नोकरी लगाइदिन्छु भनेर ल्याएकी हो नि, त्यसैले बिन्ती छ दिदी, हामीलाई हाम्रो घर जान दिनुहोस् न।
3: ललनजी जरा यसो पक्रिए, चल जल्दी चलि हाँसे।
5: अरे आओ डार्लिंग आओ, आज के रात रंगीन बनाए, चलो डार्लिंग।
4: ना
5: चलो चलो
1: तुम भी कान खोल कर सुन, तेरे पास भी एक ग्राहक आ रहा है, उसे खुश करना समझी, और यहाँ रोना धोना सब बंद करना और अपने धंधा को संभाल लेना।
6: हे भगवान, कुन जुनी को पाको सजाय दिदै छु प्रभु, के सोचेर आएको थिए, कस्तो कस्तो सपना देखेको थिए, तर आज सब चकना चुर भयो। यो नर्कबाट छुटकारा दिलाइदेऊ, अर्काको ललैमा लागेर घर छोड्दा आज यो अवस्था आइपुग्यो, एउटा साथी भनेर विश्वास गर्दा आज हामी माथि यस्तो विश्वासघात। पख माइली, त पनि त्यस्तै बच्न त के पाउलिस र, तर यहाँबाट कसरी निस्कने? न त साथमा पैसा छ, न त कोही चिने जानेको मान्छे नै छ। बिचरी पेउली कहाँ लग्यो त्यसले?

0: बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ट्ज मा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।